0: मेरे दोस्त और यारों के साथ बोलता है तो मुझे नसीब देख मैं क्या करूँगा, पैसे फांसी होते हैं कि बस उनके पीछे लगा रहता हूँ, मुझे नसीब देख मैं क्या करूँगा।
1: देखिए यह सवाल है, बल्कि बेटे का यह सवाल है, कहते कि मेरी उम्र 19 साल है और मेरी दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से लग चुकी है जो को मैं छोड़ भी नहीं सकता हूं कि वो अच्छे नहीं हैं। वालदे मुझे नसीहत करते रहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ वक्त मत गुजारा करें, अपना वक्त जाया मत किया करें। मैं उनकी बात नहीं सुनता हूं, मुझे अपना नसीहत करें, मैं क्या करूं। ये बेटा परेशान है और ये अच्छी अलामत है। जानते परेशानी क्या है, कोई ये सवाल कर रहा है कि आप मुझे नसीहत करें मैं क्या करूं, उसे ये पता है कि वो गलत कर रहा है। और ये जानना, कोई शख्स ये जान ले कि वो गलत कर रहा है, ये तौबा की इब्तिदा है, पहली किरण है। मैं आपको यह नसीहत करता हूं, सबसे पहले आपके लिए दुआ करता हूं, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए और सबके बच्चों के लिए, हाजरीन समीन सब मुसलमानों के बच्चों के लिए, कि अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने वालदेन के लिए और पूरी उम्मत के लिए आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह ताला आपको और हर मुसलमान बच्चे को अपने रब का प्यारा बना दे, ऐसा बना दे कि अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आपको, हमारे बच्चों को और आपके बच्चों को अपना वली बना दे, अपना प्यारा बना दे। आपने दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि फौरन जाके अपने वालिदैन से माफी मांगो और शैतान ने ये जो दीवार कायम कर रखी है ना आपके आपके वालदेन के बीच में नसीहत के नाम की, बस नसीहत ही करते रहते हैं वालदेन। जब भी उठता हूँ, जब भी बैठता हूँ, जब भी आता हूँ, जब भी जाता हूँ, बस ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। शैतान कहता है, दोनों शैतान, शैतानुल जिन जो वसवसा करता रहता है और शैतानुल इंस जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो बुरे दोस्त हैं, उन्होंने ये दीवार कायम कर रख दी है तुम्हारे और तुम्हारे वालदेन के बीच और शायद तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच की तौबा की जो एक रास्ता था उस पर दीवार कायम कर दी है और तुम्हें इस गलतफहमी का शिकार बना दिया कि ये तो सिर्फ तुम्हारी बुराई को ही देखते हैं, तुम्हारी अच्छाई को देखते ही नहीं है, इसलिए तुम्हें बार बार बुरा भला कहते रहते हैं। इसलिए इस दीवार को फौरन गिराओ और जाके अपने वालिदैन से माफी मांग लो। और वल्लाही अगर आप वालिदैन से माफी मांगते हैं और वालिदैन आपको माफ कर देते हैं, अभी तक नाफरमानी करते रहे हो, सर उठा के बात करते रहो, बदतमीजी करते रहो, अभी तक डांटते रहे हो, शायद गालियां भी देते गए, अल्लाहु अलम रहम करे हम सब पे, अभी जाके सर पे बोसा देकर माफी मांगो। जब वालदेन अपने दिल से माफ कर देते हैं और इस खुशी से आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वालदेन बददुआ नहीं देते अपने बच्चों को, कभी उनको मजबूर ना करने के वो बददुआ दे अल्लाह के लिए, मजबूर हो जाते हैं वो, हम उन्हें मजबूर कर ही देते हैं बाज़ औक़ात, वो भी बशर है, कभी मुंह से बददुआ शायद निकल ही जाती है, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं कि बददुआ ना दें। बचें वालदेन की बददुआ से, फौरन जाके इस दीवार को गिराएं और अपने वालदेन से माफी मांगे, सर पे बोसा दे दें और कहें मैं आइंदा आपको परेशान नहीं करूंगा। दूसरी बात, अपने इन दोस्तों से जो तुम्हें यहां तक लेके आए हैं दूरी इख्तियार करें, उनको छोड़ दें। यह ना कहें कि मैं उनको भी नसीहत करता हूं, मैं उनको भी बदल लूंगा।